आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

0: घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार बड़ी होशियार, करके सिंगार ही जाल, मेरे मन के द्वार।

Observando esto, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों,

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301

0: प्रवास रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM प्रवास रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਮਨਾਵਾਂ।

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन दिस इज वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स देयर को

से खरियां खरियां सुनाने वाला पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार निथे बोलन वाले आप दे दिलां ते राज करने वाला ये है जी प्रवास रेडियो फ्रेंचर। जी हां, प्रवास रेडियो फ्रेंचर इज वन एंड ओनली वन इंडियन रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो, बिल्कुल दोस्तों, प्रवास रेडियो इज योर ओन रेडियो स्टेशन।

छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना प्रेम का राग पुराना पुराना पुराना मैं जैसे यमला पगला दीवाना हो रप्पा।

दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोतियों ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा।

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: चले, कुछ अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो, कुछ आज अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
1: वाह वाह, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
0: वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये फिल्म नूर जहारा फिल्म द
1: जहारा,
0: हाँ जी।
1: अच्छा।
0: और मदन मोहन जी का म्यूजिक है जिन्होंने मैं सब तो पहले गीत सुनाया था आपकी नजरों ने।
1: वंडरफुल जी, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री क्या बातें ने, पर जिहड़ियां मैनू खास करके जिहड़े 90 दे 70 दे जे इत्थे दे गाने ना 30 साल दे विच विच जिहड़े हन कमाल दे गाने। ए नहीं भी अज भी चलो कोई कोई गाना वधिया मैनू लगदा, लेकिन पिछले सारे ही सोहणे लगदे ने गाने।
0: पिछले सर तुसी गीत अगर तुहानू नींद नहीं आ रही ना पुराने गीत तुसी लगा के सो जाओ तो तुहानू इवें लगेगा जिवें ओह तुहाडे लई लिखे गए ने।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: जज्बात ने।
1: हाँ जी हाँ जी, नो डाउट।
0: कोई भी गीत तुसी सुनोगे हर व्यक्ति नु ये लगदा ये मेरे लिए लिखा गया, ये मेरे जज्बात ने।
1: जी जी आराधना जी, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसी इन्नियां सोहणियां रौनकां लाईयां, गाने सुनाए।
0: थैंक यू।
1: मैं तुहाडे नाल एक शेयर करांगा
0: जी, सॉरी।
1: ए नज़म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने।
0: ਤੁਸੀਂ
1: ਕਹਿਣ ਡੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ।
0: ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ।
1: दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने, ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है सर।
1: ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने, बेरुखी दी बारिश सजना बंद कर दे, इस जग विच दुख बथेरे ने, बेरुखी दी बारिश बंद कर दे। ऑलरेडी दुख बड़े ने, उतो तुही भी दुख देन दे हो।
0: आहो नहीं, मैं तो आप जी नु ये कहांगी कि हुण आप जी रेडियो तो खाली जदो हुण ते एक सोण जिहा पैग बना लियो।
1: नहीं ये तू अर्ली है जी, अर्ली है, सौन लगा।
0: अच्छा
1: इस वे मैडम जी 5 बजे ने साडे जर्मन दे विच।
0: अच्छा जी, अच्छा,
1: धुप लगी है। धुप लगी है।
0: ओके ओके, अच्छा जी।
1: अजे मैं अपने गार्डन च काम करना, बूटे लाने ने, बहुत सोहने फुला।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी हाँ जी,
0: गुड गुड, वेरी गुड।
1: ते मेरिया शुभ इच्छावां तुहाडे नाल, तंदुरुस्त रहो, जीउंदे वसदे रहो।
0: थैंक यू सो मच सर, और सारे प्रवाद रेडियो के श्रोतावां नूं शाम दी सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
1: थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।
0: और बस आपां प्रवाद रेडियो नाल इसे तरह प्यार साडी मोहब्बत बनी रहे।
1: बहुत बहुत मेहरबानी, मेहरबानी
0: साहब नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी। साडे वल्लों वी तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल, साडा वी प्यार उन्ना ही बरकरार, बल्कि दहां नाल जर्ब दे के। ठीक है जी
0: जी जी, ओके, थैंक यू,
1: हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, बाय बाय। सो ए सन जी दिल्ली तो आराधना जी हुणी, जिहड़े खूबसूरत गाने सुना के गए ने। ते दोस्तो इत्थे ही साडा अज दा प्रोग्राम जिहड़ा ओह खत्म हुंदा, ते अगले हफ्ते सैटरडे संडे फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे। मेरी तरफों देशां विदेशां दे विच प्रवाद रेडियो सुन रहे सारे सज्जणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उसके बाद आप जी वाल लावांगा, आप जी दियां कालां लावांगा। मैं

जे वेचने नू राजी हो गए किते गोरे लालची कोहे नूर हीरा तेरे गोटे विच जड़ दूं।

के हम दोनों बेकरार हो जाएं, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात।

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुज्जी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दिया ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशड़ अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना छिड़के। वह अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना कीती ते ना ही मौत तो डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तो ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसाना किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटी दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत भरा पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों इक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी। इह तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह होणा ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओह लावारस किदां होया? ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके। हांजी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमां दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हूं लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ? ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

van dosto. ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूब सूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते प्रात्री भाव दिया खुशबुआं खिलारदा वाह वाह आप सब की जिंदगी के खेड़िया च वाधा करदा

0: गीत होर सुन दे जी सिंदर सिंह दा
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले भाई आज तो नजारा आ गया भाई
2: देखो ना जी इतनी सोनी जन लेके आया
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया वो ताली देते वाले ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई जिंदा ना बहुत बैठा बैठा हो जाए
2: मालको ला दें
1: भाई वाह वाह वाह